0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
1: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
4: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
4: तपसिल
5: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी
4: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी
5: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
4: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
5: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
4: थप जानकारीका जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: रोग पहचान का लागी प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्यूनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा चौबीसै घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिकल लीगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टिकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: कितना ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते भालबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांव पालिक में आदिवासी जनजाति उपकरण के वेशभूषा कला संस्कृति संरक्षण संबंधी सरकार वाला हुकन संगे छलफल विद्यालय में धमाधम विद्यालय सुधार योजना निर्माण करते योजना निर्माण से विद्यालय की अवस्था सुधार करने में सहयोग होना प्रधानाध्यापक नेपाल मानव उत्थान के अध्यक्ष में कांशीराम ढुंगाना चयनु नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान में संदीप लामिछाने नियुक्त जानकी गांव पालिका के दुर्गौली में आदिवासी जनजाति हुकरन की वेशभूषा कला संस्कृति पहिरान पुराण गीत संबंधी सरकार वाला हुकन बीच छलफल हुई बा। छलफल में सरकार वाला हुकर थारू समुदाय में लोप हुई करलक वेशभूषा कला संस्कृति पहिरान पुराण गीत संगीत संरक्षण में अग्रज बुद्धिजीवी अगुआ सक्कुजहन के भूमिका हुई पर्णमा जोर दे गिलबा। कार्यक्रम में आदिवासी के अधिकार समस्या स्थानीय सरकार के भूमिका सरकार वाला हुकरण की भूमिका संबंधी प्रश्नवाली वितरण समेत लेखन संकलन कर गिलवा। छलफल में जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 की निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी थारू समुदाय के भाषा कला संस्कृति संरक्षण के बात में भाषण में केल सीमित नहीं धरके व्यवहार में उतारना लागू करे पर्ना डीजे बाजा के कार्यक्रम है समेत प्रोत्साहन देना नई हुईना बटैत्याल बाट बुद्धिजीवी अंगनदास चौधरी से रैतिगलक भाषा कला जगै नकलाक तीन तह के सरकार से सहयोग कर पर्ना हो निरंतर रूप में समेत अंतरक्रिया छलफल जैसी कार्यक्रम के से आवश्यकता रहल बटोले बाट बुद्धिजीवी नाथुराम थारू से पाचक समय में समुदाय में हरेक किसिम के संस्कृति थारू भाषा कला थारू पहिरान लोप हुई गैले से एक संरक्षण केलक आपन घर से समेत व्यवहार में लागू करे पर्ना में जोर देना बटोले बाट उसका थारू समुदाय के अगुआ जगतराम चौधरी थारू समुदाय के कला भाषा संरक्षण के लाग निरंतर छलफल चलाए पर्ना और स्थानीय सरकार से फिर सहयोग करना जरूरी रहल बटोले बाट टीकापुर बहुमुखी कैंपस टीकापुर के सह प्राध्यापक बाल कुमार चौधरी आदिवासी जनजाति उकरण के भाषा कला संस्कृति वेशभूषा पहिरान संरक्षण के लाग युवा और समेत थारू अगुआसे निभाई पर्ना समेत स्थानीय सरकार के जिम्मेवारी हुई पर्ना बटोले बाट और अगुआ होलीराम चौधरी से फे थारू समुदाय के पौराणिक गीत संगीत लोप हुई अवस्था में रलकोर से संरक्षण करे पर्ना पुराण गीत फे प्रस्तुत समेत करे पर्ना बटोले बाट पाचक समय में थारू समुदाय के रीति रिवाज चालचलन संस्कृति कला पुराण गीत वेशभूषा फिर पहिरान लोप पुना अवस्था में रलक वर्षे एक संरक्षण के लाग थारू अगुआ अग्रज बुद्धिजीवी सबको जाने सक्रिय हो के अभियान के रूप में निरंतर छलफल बहस अंतरक्रिया जैसी कार्यक्रम संचालन करपना निष्कर्ष निकाल गिलवा साथ ही एक दिगोपना के लाग हरेक तीन तह के सरकार से फिर आदिवासी जनजाति उपकरण के संस्कृति थारू भाषा कला थारू पहिरान संरक्षण के लाग सह करपना देख पड़ल बा। हरेक विद्यालय में पंचवर्षीय विद्यालय सुधार योजना बंतीवा पंचवर्षीय योजना के आधार में रहकर प्रत्येक वर्ष विद्यालय सुधार योजना निर्माण के समेत अध्यावधिक करना समेत रहलबा विद्यालय से असार मसान्त सम विद्यालय सुधार योजना निर्माण कर परत विद्यालय सुधार योजना कलक ने विद्यालय के समग्र विकास हो। विद्यालय सुधार योजना अब के दिन मासिकाई उपलब्धि कतरा पुगैदा विद्यालय के भौतिक अवस्था कैसे बनैना हो विद्यालय तथा सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनैना काका क्रियाकलाप करे परी कहना एक समग्र योजना रलक ओर से विद्यालय के अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक सरकार वाला हुकरन बोलाके तमाम कार्यशाला गोष्ठी आयोजना करके कार्यक्रम आगे बढ़ायल। कालिका आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक जोगी रावत के कहेबा विद्यालय सुधार योजना में अपनौकरा शैक्षिक पक्ष के धेर जोड़ दिलको विगत के वर्ष में अभिभावक विद्यार्थी और सरकार वाला पक्ष फे आके सुझाव फे समेत विद्यालय सुधार योजना समेत में जोर के तमाम पक्ष से समेत विद्यालय के अवस्था सुधार करके विद्यालय सुधार योजना निर्माण करना लागिल बटोले बाटे खड़गा स्मृति मावी के प्रधानाध्यापक जनकराज ओझा के कहाइबा सहकर्के विद्यालय में सुधार केलक जनजागृति मावी के सीतापुर के प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद भंडारी से विद्यालय के समेत विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक ओ समेत और सरकार वाला बीच फिर छलफल करके प्राप्त सुझाव सहित के समावेश करके विद्यालय के आगामी योजना निर्माण करना बटोले बाटे। खोज खबर में गरीब विश्राम विश्राम पाँच फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बनने लागो तो
2: बेला भाग ना बनती आपने था पाव दे जो सब समा बनी खाना सके न सके सब काम करनु पर्छ तो गाड़ो हुन्छ अपनी काम करने विदेश जानु भएको के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। नेपाल मानव धर्म उत्थान समाज के पांचौं अधिवेशन से कांशीराम दुंगाना के अध्यक्षता में लाव कार्य समिति चैत करल बा। समिति के उपाध्यक्ष में तारा साउत, सचिव में सारा दास सोरारी, सह सचिव में मधु अधिकारी हो, कोषाध्यक्ष में नेहा थापा चयन हुई बाटे। कार्य समिति के बारे में समेत काशीराम ढुंगाना जानकारी दिएबाटै सोमबार के हुलक साधारण सभा में संस्था की निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर रावल से मानव सेवा के लागि स्थापना हुलक संस्था से आगे टिकापुर जानकी जोशीपुर लगायत के क्षेत्र में तमाम कार्यक्रम करल पाछ कोविड एहर शिथिल रल को लौवा कार्य समिति से संस्था के उद्देश्य अनुसार काम करना अपेक्षा व्यक्त कर। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहल बा। हाल मनसुन के न्यून चापे रेखा नेपाल के पश्चिम भूभागमा सरदर स्थान के कुछ उत्तर नेपाल लगह ओ समेत पूर्व भूभागमा सरदर स्थान के आसपासमा रहल बा, जेकर प्रभाव से हाल लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के अधिकांश ठाउँमा औसत कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश में साधारणतया मौसम बदलना तथा मध्य प्रदेश में आंशिक मौसम बदलना बा। कलश लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान तथा कोशी बागमती गंडकी कर्णाली सुदूरपश्चिम के कम स्थान में हल्का मध्यम पानी पर्ती रह। कैलाली के पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय फिर से संचालन और स्तर उन्नति के मांग करती सोमवार अर्थमंत्री डा स्वर्णिम वाग्ले ज्ञापन पत्र बुझाइल बाटे। कैलाली के सात स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि भजनी उद्योग वाणिज्य संघ के संयुक्त रूप में ज्ञापन पत्र बुझैती समेत लम्बा समय से बंद रक भजनी नगर पालिक पांच लाल बोझी स्थित के पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय तत्काल पुनः संचालन में समेट कर मांग करल बा। 2022 साल से लेके संचालन में रहल पृथ्वीपुर भन्सार कार्यालय है सरकार के निर्णय अनुसार बंद करल पासे स्थानीय वासी के असंतुष्टि व्यक्त करती आयल बाटे। कलश लम्बा समय से संचालन में रहल ऊ भन्सार कार्यालय हटायल पासे हाल सेवा अवरूद्ध हुईलक और यही से स्थानीय नागरिक उकरण में समस्या भोगे पड़ल समेत जना सकल बा। असी के भन्सार कार्यालय बंद करबे कैलाली जिला के स्थानीय तह के लाख समेत 3 लाख से ढेर नागरिक कृषक व्यापारी तथा उद्योगी उकरण भारी सस्ती हुई रलक ज्ञापन पत्र में उल्लेख करल बा। भन्सार कार्यालय पुनः संचालन के लग फसी नगर पालिका ई आगे नई भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर मास पत्रचार कर सकल और ज्ञापन पत्र में उल्लेख करल बा। ई भन्सार कार्यालय भजनी घोड़ाघोड़ी गौरीगंगा नगर पालिका तथा जोशीपुर बर्दगोरिया कैलारी जानकी गांव पालिका के 3 लाख से ढेर नागरिक व्यापारी उद्योगी तथा कृषक उकरण सेवा प्रदान करते आयल बा। साथ ही कार्यालय से राजस्व संकलन वृद्धि तथा राजस्व चुहावट नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान पुगैत आयल ज्ञापन पत्र में उल्लेख करल बा। खोज खबर में गरी फैन से विश्राम विश्राम पाच फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: तपसिल
7: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी,
6: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी,
7: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
6: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
7: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
6: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
7: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किङ, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली
10: संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान साठी अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
11: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस तो?
12: मैनै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै नै गर्छु।
11: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
12: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
13: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विश्राम पास फिर से स्वागत बा। कंबोडिया के भूगर्भ सेवा विभाग के अनुसार स्थानीय समय अनुसार बिहान के 7:34 जाइबेर चोको प्रांत में समेत 4.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल बा। भूकंप 103 किलोमीटर गहराई में समेत रहल बताया गेल बा। पश्चिमी कंबोडिया के 100 किलोमीटर क्षेत्र में भूकंप के धक्का महसूस कर गेल बा। कंबोडिया के कॉफी उत्पादन क्षेत्र शहर पेराइरा में समेत भूकंप के सबसे ठहर धनजन के समेत क्षति पुगाइल बा। कलसे आसपास शहर में फे भयो काउ क्षेत्र में फे भूकंप के प्रभाव पड़ल बा। भूकंप के समेत केन्द्र बिंदु चोकू प्रांत के सान होसे डेल पलमार गांव नजिक रहेको बताएको छ। बताइल बा कलसे मनो गांव में समेत जैना ओ समेत बाहर जैना सड़क में क्षति पुगल से फेन वहां मानवीय क्षति भर नहीं रलक। स्थानीय प्रमुख लियोन फाबियो मारिना से बतोले बाट भूकंप के केन्द्र बिन्दु में करीब 55 किलोमीटर दूर समरलक पेरेरा शहर में भारी क्षति हुई बा। कलसे बीबीसी से प्रमाणीकरण के करल भिडियो में शहर के मुख्य चौक प्लाजा बोली भारा में कमती मफे 152 भटकल बा। कलसे भवन भटक के चौका में समेत भागना से सो धूरे धूर रहल बा। घटना के बोला चौका में समेत भारी संख्या में मनन के भेला हुई बा। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान में संदीप लामिछाने हे चयन करल बा। आगामी अगस्त 3 से लेकर सेप्टेम्बर 12, 2026 सम मलेशिया में आयोजना होना एसीसी प्रीमियर कप से लेके लागू हुई नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के एक दिवसीय कप्तान के रूप में लामिछाने जिम्मेवारी टोगिल क्यान के सचिव पारस खड़का एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिले बाट मलेशिया में हुई एसीसी प्रीमियर कप नेपाली टोली के लाग आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मध्य महत्वपूर्ण मान गेल बा। प्रतियोगिता में लामिछाने नेतृत्व के टोली प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने बा। यह समाचार संगे खोज खबर वाइल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। जानकी गांवपालिका में आदिवासी जनजाति हुकरन के वेशभूषा कला संस्कृति संरक्षण संबंधी सरकार वाला हुकन बीच छलफल। विद्यालय में धमाधम विद्यालय सुधार योजना निर्माण करती योजना निर्माण से विद्यालय के अवस्था में सुधार करना में सहयोग पुग्ना प्रधान अध्यापक हुकरन के कहाई। नेपाल मानव उत्थान के अध्यक्ष में काशीराम ढुंगाना चयन नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान में संदीप लामिछाने नियुक्त। लिता बकलक थारू भाषक खोज खबर त्रय और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका पर FM सुनते विराम राम।

0: की लिटे शर्त लागू हुई एंसेल नेपाल के लग।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वान नन्दिए गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसेकले कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: कापी रहेठ कभी पेन्सिल रहेठ कबू झन फटा काजी का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373
3: खाने मन तो कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
4: तब एक्लो कहाँ ससरे यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाई पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसके जस्तो यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना
5: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ
4: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे
5: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091530892

0: दाई गुची को ब्याग कति को
1: बड़ो मचे जुड़ी को बच्चे
0: पीर दाई एलबी को सूत कति को
1: बड़ो मचे जुड़ी को बच्चे
0: है यो दाई पे 250 दिन सुनी
2: कहाँ हुन्छ दाई माफले 400 रुपया पर्छ नि
1: बड़ो मचे जुड़ी को बच्चे

0: काफी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: शेजुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, सम्बन्ध समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अंताक्षरी अपने के लक्ष्य से लाके बैठक सक्कु सक्कु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संगन स्वागत के संग अभिवादन करे चाहते मैं उमिका बैठे की बैठ के साथ हेरे बाबू रत्नापुर मगर और भाई दीपेन्द्र हमारे तीन जाने बाटी अपने के संगे और हमारे संगे संगे यात्रा करती बाटी संगारी टीकापुर में घाम लागल बा ठामा कसिन बा टीकापुर में चटकार घाम लागल बा अपने ठामा कसिन बा कसिन कौजा करती बाटी कसी के समय बिताई दी अपने के समय कसी के चलती बा और कौजा करती बाटी कसी के अपने होके दिनचर्य बिताई दी आलसी समय हो दोपहरिक समय हो दोपहरिक समय एकदम रमाइलो करे समय है कुछ हदसम रमाइलो रसपान करे अपने के संगे मैं आपूगल बाटू मैं मिशन और अपने के चाहन अपने चाहिए मजा मजा गीत संगीत सुने पर बाटू अपने के संगे और अपने के चाहिए अंताक्षरी अपने संगे अंताक्षरी खेलना रहे एकदम जमर को कसले बाटू तो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपचार में यात्रा में जहां हुई भी जोन ठाव में हुई वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन भी करा मैं अपने अर्जी करती हूँ ओखलक हमारा लाइन खुला बा 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन खुला बा करीब करीब 1:45 बजे सम यात्रा कर भी और कार्यक्रम में सहभागी जन भी करा मैं अपने जानकारी करती बारू तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जन इटे कर भी कार्यक्रम में इटे कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागी तरीके न जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से अपने डायल करते कर भी 091-5-61-255 के लाइन खुला है बता समय एंजॉय करी रमाइलो गीत
1: बड़ा पानी में गई तू ना

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको पाछ पनि स्वागत छ। कोही टेलिफोन लाइन मालबाट मे बोल्न चाहम के उठे कहाँ छ हजुर? राम राम
1: राम राम हजुर राम
0: नारायण जी कैसिन बहाल खबर
1: बढ़े बापल घाम लागल बा जोरदार
0: एकदम आज तो चक्कर घाम बने
1: हजुर
0: सरके सरके दौड़ती बाती का
1: दौड़ती बाती का अपल
0: नारायण जी का कहते गाड़ी चलती दौड़ती फोन करती करबोट समस्या हुई कहा हूँ से
1: नगर में बात
0: ओहो तब फिर नारायण जी नहीं जैसा बात बटोना मन लगी तो कहूँ रुक के बात बटवा लेगी नहीं तो फिर अपने गाड़ी चलेना मन नहीं गाड़ी चलेती चलेती मतलब रिक्शा चलेना मन नहीं कहूँ ध्यान अंते हुई जाए आगे बार भारी पत्थर आई जाए तो समस्या हुई जाए कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदम खुशी लागल जहां रहे एकदम सावधान रही खुशी रही मजे रही नहीं और अपना गर्मी बा आवाज थे के हमन कहाँ से फोन कैली
1: हमरे बाटी भगतपुर लंग
0: ओके भगतपुर से संपर्क में अली जहां रहे से याद कर रहे थे एकदम खुशी लागल आज अंताक्षरी खेलना हो अंताक्षरी तो अपने नहीं खेलती शायद
1: हजुर हजुर नहीं खेलती
0: तो गीत सुनेबी आज एक गीत मजा गीत
1: सुना
0: अपन अपन फैंस हुकरन अपन नाटपाट हुकरन अपन संघरिया हुकरन नहीं सब कुछ जनहन अपन मुखार बिंदु से अपन गीत सुनाई
1: हजुर हजुर अरे गोरे गोरे गाला तुहर बात हो पता नहीं कमरे तुह बात गोरे गोरे गाला तुहर बात हो पता नहीं कमरिए बात हो चमके लग्न तुहरे सूरतिया हो देखी दियारा लो भाई तुम्हारे सूरतिया
0: हो भाई बड़ा मजा गीत कैसी गीत होना रटक नाच से गीत होना
1: हजुर हजुर
0: रटक नाच यानी कि झुमरा गीत ना
1: हजुर हजुर
0: ओके मजा गीत सुनैली पहले पहले दसई में रात के नाच करे बाजी चाहे अस्त अस्त गीत गावे मन रहोक नाच करे बाजी तो वह याद दिलैली अपने नारायण जी बड़ा खुशी लागल
1: हजुर
0: समय फेन आई जाना दसी दसी आ बड़का दसी दिया देवारी है बेलक बेलक समय फेन आई
1: जाए
0: बिल्कुल धन्यवाद अस्त अस्त गीत लेके आई क्या कर भी अब हमरे एक गीत बजाब अपने के लग अपने किन किन सुनाई चाह भी नाम ली
1: सबसे पहले अपने हो आकाश कर
0: धन्यवाद
1: जटवा जी बरल संगरिन कार्यक्रम सुने रेडियो में फोन करें जटवा ही और नारायण चिन्हन के सुना सबको जान कह तो बाय बाय
0: हजुर राम राम वहां फोन कर रहे नारायण चौधरी जी रमाइलो गफिल वहां से हमने रमाइलो बातचीत बतैली वहां चाहिए बैठक के डगरामन से हमन बात कर रही अपने कृपया हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनेबी का नाम है आपको जानकारी करती बाटू तो फटाफट डाल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनेबी कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनेटे कर भी कहना जानकारी करती अठीवर एक ठो रमाइलो गीत जोड़ब गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी सुनने का नब्बे 5 61 255 लाइन खुले बात सबके लगे इन्जॉय करी ये रमाइलो गीत से

बिल्कुल ए रमाइलो गीत कार्यक्रममै जोडली, एकदमै मन पर्ना गीत आफ्नो कानमा मन परल कि नै मिन्ट एकदमै मन परल। अघि जी जहाँ अभी खेतमे बारीमे दुकानमे मकानमे काममे धन्दामे जहाँ रहले सेभेन कार्यक्रममा सहभागी जनैली 091-561-255 अर्थात 091-561-255 एकदमै लाइन खुल्ला बा। कार्यक्रममा आइदि कर सक्ने कर हमार रमाइलो गफी का नमया दुकान जानकारी करती बाटो तो कार्यक्रममा आइदि कर से विशेष करके अपने हुकन के संगे हमरे बात बटवाब अपने हुकन के संगे चाहिँ मजा मजा गप करब। अब आज एक दिन गीत गैना हो गीत गैना इच्छा रुचि रह सब रह कार्यक्रम मन संगे अंताक्षरी खेलक लग आइक पर्ना रही विशेष करके 091-561-255 के लाइन संगे अपने जहां रेडियो टीपा ठुकल से रेडियो टीकापुर FM 101 MHz मार्फत सुने थी रेडियो सेट मोबाइल सेट मार्फत कल से जहां रेडियो नाइटी पटी कल से उठा में हमारे इंटरनेट मार्फत सुने सकती ऑनलाइन मार्फत जस्ता www.tikapurfm.org हमारे वेबसाइट मार्फत कल से मोबाइल ऐप टीकापुर FM एप्स अपने एप्लीकेशन बा टीकापुर FM के तो वहां से मार्फत सुन भी टीकापुर FM एप्स उस तक हमरो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत अपने हमन सुने सकती का नाम है जानकारी का दिवर मतलब अपने जैसी के सहज हुई इंटरनेट के पहुंच से फिर सुनने सकती कल से अपने के हमारे वेबसाइट से ऐप से मतलब और वस्ते के अपने के चाहिए रेडियो सेट से मतलब जिन जैसे के सहज हुई वह तरीका से कार्यक्रम सुन भी हो कार्यक्रम में सहभागी जन भी कहना मैं आप लोग नर्जी करती बारू। ये दोपहर समय हो अलसी समय अलसी लगना बेला हो ये बेला चाहिए आराम करना बेला नाश्ता खेना बेला और रेडियो लगा के सुनती रहना बेला काम करना बेला हर एक मेरा एक समय होगा ये तो व्यापार व्यवसाय के बावजूद संघारी उनके हुई भी अपने अपन व्यापार व्यवसाय में बिजी हुई भी और रेडियो खोल के अपन अपन काम करत हुई भी कल से वहां उनके फिर हमन कार्यक्रम में सहभागी जने भी वैसे की कोई यात्रा में हुई भी रेडियो सुनती हुई भी दौड़ती हुई भी वहां उनका फिर हमें कहना चाह जस्ता मोबाइल के ईयरफोन में फिर अपने सुनती दौड़त हुई भी कल से वैसे के बस गाड़ी मोटर में फिर अपने सुनती नहीं गत हुई भी आई मीन जे जहां हुई भी वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनेदी का नाम और कहाई हो और कहती कार्यक्रम में डायल करते कभी सुन 091-561-255 कार्यक्रम की शुरुआत में बेंच एक ठाउर गीत जोड़ा दूसरों गीत गीत के पास समय नहीं बैठू डायल करते कभी सुन 091-561-255 लाइन खुल रही बात।

0: का पी रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: खाने मन तो कहा तर के जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फिर खान पर्छ
4: तो एक्लो कहाँ ससरे यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाई छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाई पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
6: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
7: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
6: अब त म ढुक्क
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
7: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

पात्र नेपाली पात्र मार्फत सुनि सकि इन्टरनेट के पहुँच रहा संघारी उक्री अपने ठाउँ से संघारी कसिन बा हाल खबर आज एकदमै गर्मी बा चटकार घाम बा अपने ठाउँ मा कसिन बा अवस्था कौजा करती बाती आजकल का काम करती कस्ती के अपने के समय बीत दबाई लगभग लगभग साउन महीना के हमरे लगभग अंतिम हफ्ता में प्रवेश कैसे कल बाती लगभग हमरा लागत किसान दाजू भाई हमरन के आजकल की काम शायद मल छिटना काम हुई मल छिट से कल हुई या कोई छिटना तैयारी केकरो घास कटना हुई मल जोन धान में घास ज्यादा बा हुई को घास मरना दवाई छिटत हुई शायद कोई घास उखारत हुई भी धान मन से एकदमै कामे काम आजकल तो कहीं कि अगाड़ी हमरे जब पानी नहीं पड़ते तब भी हमें धान लगा से कल रही किसान दाजू भाई सब कुजा नहीं हमरे सब कुजे तो हमारे से फिर घास कुछ ज्यादा ही देखा पड़ल बा तो कारण से फिर घास तो नहीं ना फिर काम हुई लागत मीन और अस्त अस्त काम हुई तो आजकल तो लगभग बर्दा भैंसा पलना फिर एकदमै कम हो गई बा लगभग सही में लगभग लगभग 100% सम लगभग के पर एक भी परसेंट हुई लगभग 98% सम शायद कोई नहीं पालत गोदगाट पालत हुई भी तो शायद भैंसी वा छकरी बकरी पाला ठीबी कल से वहां का निकला घास काटना हुई थी नहीं तो शकुन के घर में लगभग पावर टिलर हो गिल बा कोई कोई घर में बातें अभिन बर्दा भैंसा तो वहां के सही कम से कम लगभग 1-2% हुई ही वहां के तो तब उन घास काटना एकदम एक कमे रह के छकरी बकरी निकला काटना हो तो लगभग काम खास से ओटल है तो नहीं हो तरह फिर गोटगट काम तो किसान होकर के अवगे ठीक ठूक गीत जोड़ा और गीत जोड़ गीत के पास महीने बाटो डायल करते कर विश्व 91.5 1 छोटे 255 तब समय इंजॉय करी ई रमाइलो गीत से गीत के पास समय आईने बाटो

हजुर सँग बेला अब कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल अब टाटा बाई बाई के जना बेला हो गिल बा विदा मंगने बेला हो गिल बा तर मारे अत्रपट रेडियो सुन के साथ दिले अपने धन्यवाद देम कार्यक्रम में चाहिँ सहभागी जनुया कलर हुन्छन् एकदम।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कह दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
2: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: घर परिवार में सभी बिरामी आखिर स्वस्थ रहो ना स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
5: होइन चाइनाको माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
4: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसके छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
5: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टीकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
6: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
7: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ढकला रोड टीकापुर कैलाली

0: ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 25% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
2: एंसल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: सामुदायिक रेडियो टीका पुर एफएमके सञ्जिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबरमा अपनेको स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्रो पात्र नेपाली पात्र में फिसुन्टी रहवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कैलाली में भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वर्षवासी दशैसी आखा लालपूर्जा बारना तैयारी हुई वकरला स्थानीय तह के हाली काम कर पर्ना विद्यार्थी सामाजिक विषय अध्ययन में कठिन शिक्षक उपन के कहे बाल बालिका भूगोल सामाजिक परिवेश सिखाई आवश्यक बहुआ के आक्रमण में से चितवन में एकजना की मृत्यु ओमंगी लगात की समस्या समाधान करना सरकार के ध्यान आकर्षण सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति यापन काम हत्तीव्र जिल्ला बुटीलाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति गत असाठे काम शुरू कलाबाट गरीब 2 महिनाकी अवधिमा कैलालीको 13 स्थानीय तहमा वडा तहमा से तथ्याङ्क प्रविष्ट जग्गा खोजी नाप जाँच लगायतको काम सञ्चालन हुँदै जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिको अनुसार जिल्लामा हालसम्म 1,37,000 से धेर बढ़ी भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी और अव्यवस्थित बसोबासी के तथ्यांक प्रविष्ट होस्याकलवा तथ्यांक प्रविष्ट के काम तीव्र गति में आखा भर्ती समिति बोटैलवा भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के जिला समिति समन्वय हो सहजीकरण के काम करला हुलेसेफे करीब 80% काम स्थानीय तह के जिम्मेवारी में पर्ना समिति के कहेवाई स्थानीय तह के भूमि प्रशासन शाखा समिति खटलक प्रविधिक कर्मचारी जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सक्रियता के काम गति निर्धारण करती रहो वहां हाली काम कर सेक्ला उत्रा हाली हुईना समिति बुटीलोट स्थानीय तह के हाली काम कल खण्ड मकैलाली में भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी के कुछ पूर्जा दशै आघन वितरण कर सेक्ना भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग के जिला समिति जानकारी दिलाट तर अव्यवस्थित बसोबास के हकमा फे कुछ समय लग्ना मोटिलोबाट भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति कैलालीके सदस्य सचिव तथा नापिक कार्यालय कैलालीके प्रमुख केशवराज लेखक मोटिलोबाट सदस्य सचिव लेखक के अनुसार कैलालीमा जानकी गाउँपालिका भजनी ओ गोदावरी नगरपालिका तुलनात्मक रूपमा मजा काम कतिरहलबाट ओ महफे भजनी नगरपालिका अभिन मजा काम कतिरहल कैलालीमा पूर्जा वितरणकै काम भजीमसे शुरू हुइना देखलक सदस्य सचिव लेखक बोटेलोबाट अनि स्थानीय तहके भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी के लाग नाप नक्सा के काम कतिरहल वाकर सबको तथ्याङ्क आफ्ना कहाँ पुग्न हो के नै हो वाकर विषयमा आयोगकै समिति हाली काम करकला ताकेता कतिरहल सदस्य सचिव लेखक के कहिबा कैलाली म सबको स्थानीय तहके प्रगति समान नै हो सदस्य सचिव लेखक के अनुसार भजनी गोदावरी ओ जानकी म सबसे धेर बढी काम आखा बर्लासेफी टीकापुर जोशीपुरमा काम के प्रगति सबको से कम हुइबा अन्य स्थानीय तह मफे मध्यम प्रगति हुइबा टीकापुरमा तथ्याङ्क प्रविष्ट के काम हुइलेसेफे वाकर पासा प्रक्रिया बरसल नै हो तर फे जोशीपुरमा काम भर्खर शुरू हुइला समिति के अनुसार विगतके आयोगकेमा कलक आवेदनमा आधारमा कैलालीमा कुल 1,40,358 जनाकी निवेदन दर्ता हुँदा नयाँ समिति हाल नयाँ आवेदनमा आकलन हुँदा हालसम्म कैलालीमा करिब 20,000 बिघा जग्गाके नापजाप पहुँचेकलबा कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानकै काम गति देना जिल्ला समिति स्थानीय तहके बीच निरन्तर समन्वय हुटिरहलबा नेपालमा भूमिहीन दलित अव्यवस्थित बसोबासकै भारी संख्या र जिल्लाकै रूपमा कैलालीमा यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुलेसेफे सक्रिय स्थानीय तहमसे काम आघ बढ़ेलक समग्र जिल्लाकै गति बढ़ेना रणनीति समिति लेलबाट पहिले पहिले पढ़ाईमा विद्यार्थी अंग्रेजी गणित के अप्ठ्यारो लग्न आजकल बच्चा हुकुनके सामाजिक विषयमा अप्ठ्यारो लग्न वा विद्यार्थी वा अन्य विशेषण सामाजिकमा फेरि अप्ठ्यारो विषय लग्न कला बोटिलोबाट कक्षा 9 की विद्यार्थी अमर चौधरी अन्य विशेष धेर सामाजिक विषय अप्ठ्यारो लग्न बोटिलोबाट ऋतिका साहिफे सामाजिक विषय मौलिक भाषा परिवेशमा लेखा पढ्ना हुलक परीक्षामा कठिन लग्ला बोटिलोबाटी पूजा रावल सामाजिक विषयमा अतिरिक्त ज्ञान नै हुलक समस्या हुन लगलक बोटिलोबाटी निलिसा विश्वकर्मा फिर सामाजिक विषय के परीक्षा के डर लग्ना बोटिलोबाटी विद्यार्थी प्रशंसा साह पूजा बोगटी फिर सामाजिक विषय में अन्य विषय से ढेर सजिलो लग्ना बोटिलोबाटी त्रिभुवन मावी बटनपुर के प्रधानाध्यापक रविन्द्र बहादुर कठायत के अनुसार सामाजिक विषय व बाकी विषय के परीक्षा में प्रवृत्ति फरक भए सामाजिक विषयमा सृजनात्मक वा मौलिक खालके प्रश्न फुसला खुइलक विद्यार्थीमा कठिन लग्न विद्यार्थी किताबी बाटमा घोक्के लेख्न विद्यार्थीके सामाजिक परिवेश मौलिक सृजनात्मक वा व्यावहारिक बाटमा ध्यान दिलसे सजिलो हुन कठाए बुटिलो बाट
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
0: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
3: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
0: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
3: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
4: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0191-560-095 मोबाइल नम्बर 98484-27359
0: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रमा बगुवाके आक्रमणमा एकजनाके मृत्यु हुलक वा पश्चिम चितवनके मेघौलीमा रहेको हरियाली सामुदायिक वनमा एक पुरूषके शव भेटलक सूचना प्राप्त हुलक निकुञ्जके सूचना अधिकारी अविनाश मकर जानकारी दिएरबाट शव भेटलक स्थानीय लख बगुवामा उहाँ रलक हत्याके प्रयोग गरी बगुवा पठाएकी शव नियन्त्रणमा काम हुँदै रहल उहाँ फेरि बोटिलोबाट मृतकके पहिचान हुन बाँकी भए यद्यपि भरतपुर महानगरपालिका 28 जितपुर निवासी 61 वर्षीय मगले बोटे सम्पर्क बनाइरहेको स्थानीय जनलबाट उहाँ ओहो हरियाली समुदाय वनमा घाँस काट्न जैलक बोटिलोबाट वनमा घाँस काट्न गैलक बोटे बाघ आक्रमण कलक भइसक्न अनुमान संचार कर्मी हुकनके अनुभव अब खोजी तथा उद्धार कला हत्या सहितके प्राविधिक टोली परिचालन गर्नबाट हाल टोली बगुवाके एक सम्भावित जोखिमसे मैन हुकनक सुरक्षित दूरीमा धर्ती घटनास्थलके पहिचान तथा शनाखत गर्न काम गरिरहलबाट प्रतिनिधि सभाकी आजके बैठकमा सांसद थुक्र किसान केलाको मल छिट्याएकी व्यवस्था बजारमा देख्ल खाना पकेना ग्यासका अभाव महँगी लगायतकी समस्या समाधान गर्न सरकार ध्यान आकर्षण गरेलबाट सांसद थुक्र विद्युत महसुल राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स औ मालपोतकी काम सर्वसाधारण भोग्न पर्लक शास्तिबारे सरकारकै ध्यान आकर्षण गर्न समय भने समस्या समाधान गर्नमा कलबाट सांसद थुक्र किसान केलाको समयमा मल सिँचाई उपलब्ध हुई नै सक्ल कारण कृषि उत्पादनमा समस्या उत्पन्न हुँदै रह कति भारत मसे सहज रूपमा मल आपूर्तिकी व्यवस्था गर्न किसान सहज रूपमा उपलब्ध गराइनमा कलबाट सांसद थुक्र धार्मिकको जुनसुकै नाम होइन हिंसात्मक कार्य क्षति हुलसे असहकार्य रोक्न सरकारके ध्यान आकर्षण करेटी सुनसरी ओतराई मधेस घटनाकी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरे दोषी कार्यवाही केमा कलबाट सांसद थुक्र जनताकी अपेक्षा अनुसार काम हुइने सेक्लक नागरिकीय प्रभावकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर नै सेक्लक वा नागरिक सुरक्षित बन्न नै सेक्लक कति समयमा नै नागरिकीय सुरक्षाकी लागि काम गर्न न सरकार ध्यान आकर्षण गरेरबाट बैठकमा प्रतिपक्षी दलके सांसद थुक्र लम्बा समयसे संसदमा उपस्थिति हुन माग गरिरहेको प्रधानमन्त्री वीरेन्द्र शाह सदनमा उपस्थित नै हुनुको तथा संसदमा उपस्थिति हुँदा समेत राष्ट्रिय पुस्ताको संसदकै मर्यादा कायम धन्यवादमा चुकुलक आरोप लगेलाबाट बैठकमा सांसद थुक्लो नुवाकोट लगायत धेरै सिन ग्रामीण क्षेत्रमा सड़क विस्तारकै अभावमा मनाइन् के कष्टकर जीवन बितेन बाध्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा लगायतमा वञ्चित हुइना हुटिरहल कति समस्या समाधान केला पहलका नाममा आकलबाट अस्तकविश प्रतिनिधि सभाकी आजकै बैठककै शुरूमा फेरि प्रतिपक्षी दलकै सांसद थुक्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी अभिव्यक्ति सच्चाई नभए संसदकै रेकर्ड मसी हटाइनामा कति विरोध कलबाट नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी श्रम संस्कृति पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद थुक्रो प्रधानमन्त्री शाहकी सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति अविलम्ब फिर्ता लेनाउ सच्चाईनामा कति गत जेठ 17 गते शेष सदनमा विरोध गर्दै अलगबाट
5: घर कहिया सिज्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जार सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान वर्जन हो का घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
10: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
9: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
10: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
9: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
10: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
9: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
10: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
10: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
11: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
12: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588
0: अर्थमन्त्री डाक्टर सोमनिम अगले 2082 भदौ 2324 गते कि आन्दोलन के क्रम नष्ट हुला प्राथमिक श्रेष्ठा के अभिलेख पुनः प्राप्त कर नई सेक्ल अवस्थामा द्वितीय स्रोत के तथ्यांक मसे विरजु प्रमाणीकरण कर सेकना बोटेलबाट प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति के आशी दरबारमा बैठकमा मन्त्री डाक्टर वागले नष्ट हुलक प्राथमिक तथ्यांक विकल्पमा उपलब्ध हुने स्रोत मसे तथ्यांक के प्रमाणीकरण गर्के आवश्यक प्रक्रिया नीतिगत सुधार आँखा बढेन सरकार प्रतिबद्धता रहल बोटेलबाट मन्त्री डाक्टर वागले अभिलेख पुनः निर्माणमा प्रमाणीकरण के क्रम अनियमितता क्षति तथा दुरूपयोग के आशंका देखे सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक निगरानी के व्यवस्था मिलाई सेकना बुटिलोबाट काठमाडौँ 26 साउन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत मंगलबार समितिकै सभाकक्ष सिंह दरबारमा बैठक सार्वजनिक लेखा समितिकै बैठकमा सांसद थुक्रा श्रेष्ठ जर्लक आधारमा मैत्री कानून रूपमा बिरजू तथा अनियमितता कायम गराउन नै हुलेको उल्लेखती कारोबार सम्बन्धी प्रमाण अवश्य कागजातकै आधारमा लेखा परीक्षण प्रक्रिया बढाइपनामा जोड़ दिलबाट क्षतिकै 3 भित्र मूल्यांकन गर्के 3 तहमा वर्गीकरण करपन्ना तथा 150 हेर बढ़ी कार्यालय व्यवस्थाकी अवस्था समेत व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन करपन्ना सांसदको जोड़ दिलबाट अस्तक सांसदको भविष्यमा बिरजू अनियमितताकै प्रमाणीकरण हो डिजिटल अभिलेखको सुरक्षा प्रणाली प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाइपर्न आउनेलबाट बैठकमा सांसदको बिरजू तथा अन्य अनियमितताकै वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध प्रमाण अभिलेखकै स्रोत सुनिश्चित गर्के सही तथ्याङ्क पुनः प्राप्त गर्के प्रमाणीकरण करपना समेत जोड़ दिलबाट कैलालीमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जस्ता स्याह लाल पूर्जा बन्न तयारी हुँदै वकलाक स्थानीय तहके खाली काम गर पर्ना धेरै सामाजिक विषयमा अध्ययनमा कठिन शिक्षक हुनके काहे बाल बालिका र भूगोल सामाजिक प्रवेश सिकाइन आवश्यक भएकी चितवनमा एकजनाकी मृत्यु समस्या समाधान गर्न सरकारकै ध्यान आकर्षण दीटावकला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टराई धन्यवाद दीटावकला खोज खबर से मैसिरा चौधरी बिदाई छु तथा 5:00 बजे खोज खबर सुन सकबी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासन सुन्थ्यो।

0: आएको हो, चिया लिनुहोस् न।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, घुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046777417।
1: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला, टेन्सन मा भए म त। अब
5: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
1: ए, यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
5: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
1: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
6: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
5: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848528।

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
2: जब देखनो तो हिन है।
1: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के 2 कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-561-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-28 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।